रंगभूमि 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: प्रार्थनया मनः शान्तम् अभवत्। इदानीम् एकाग्रतया अभ्यासं कुर्मः। तर्हि इदानीम् अभ्याससमयः। आगच्छन्तु, अद्य पश्यामः समयं कथं वदामः। प्रश्नः भवति कः समयः, यानि क्या समय हुआ है। संख्या गणना भवति एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। समझिए कि अब 5 बजे हैं। क्या समय हुआ? 5 बजे हैं। संस्कृत में बोलेंगे, पहले प्रश्न पूछेंगे कः समयः, उत्तरं पञ्चवादनम्। कः समयः? पञ्चवादनम्। क्या समय हुआ है? 5 बजे है। कः समयः? पञ्चवादनम्। कः समयः? षड्वादनम्। 6 बजे है। कः समयः? दशवादनम्। 10 बजे हैं। आया समझ में, है ना? वैसे ही 5:30 बजे है। कैसे बोलेंगे? क्या समय हुआ है? 5:30 बजे हैं। कः समयः? सार्ध पञ्च वादनम्। कः समयः? सार्ध पञ्च वादनम्। 6:30 बजे हैं। कः समयः? सार्ध षड् वादनम्। 7:30 बजे हैं। कः समयः? सार्ध सप्त वादनम्। समझिए कि 5:15 बजे है। 5:15 हुए हैं। 5:15। कः समयः? सपाद पञ्च वादनम्। सपाद पञ्च वादनम्। 6:15 बजे है। कः समयः? सपाद षड् वादनम्। 10:15 बजे है। कः समयः? सपाद दशवादनम्। पाद यानि क्वार्टर, 1/4 हिस्सा, तो अर्ध यानि अर्ध, अतः पञ्चवादनम्। सपाद पञ्चवादनम्। सार्ध पञ्चवादनम्। 6:15 बजे है। वो कैसे बोलेंगे? पाद ऊन अथवा पादोन षड्वादनम्। क्वार्टर लेस, 15 मिनट कम है ना, इसलिए बोलेंगे पाद ऊन, ऊन यानि लेस, पादोन षड्वादनम्। तो क्या क्या हुआ? पंचवादनम्, 15 मिनट के बाद सपाद पंचवादनम्, और 15 मिनट के बाद सार्ध पंचवादनम्, और 15 मिनट के बाद पादोन षड्वादनम्, और 15 मिनट के बाद षड्वादनम्। ठीक है, एक बार समय बता सकेंगे तो फिर अपनी दिनचर्या बता सकेंगे। कैसे? मम संस्कृत वर्गः 5 वादने भवति। समयः कः? 5 वादनम्। परंतु संस्कृत वर्गः कदा? 5 वादने। अत्र एकः बालकः अस्ति, तस्य नाम दिनेशः। तस्य दिनचर्या कथम अस्ति? उसके दिन में क्या क्या होता है, उसकी दिनचर्या कैसी है, देखेंगे। बालक, भवतः नाम किम्?
1: मम नाम दिनेशः।
0: भवान् कदा उत्तिष्ठति?
1: अहं प्रातःकाले 5 वादने उत्तिष्ठामि।
0: उत्तमम्, भवान् उत्तमः बालकः। अस्तु, भवान् कदा सूर्यनमस्कारं करोति?
1: अहं 6 वादने सूर्यनमस्कारं करोमि।
0: उत्तमम्, अनन्तरं भवान् स्नानं करोति किम्?
1: आम्, अनन्तरम् अहं 7 वादने स्नानं करोमि।
0: उत्तमम्, अल्पाहारं कदा स्वीकरोति?
1: अहं 8 वादने अल्पाहारं स्वीकरोमि।
0: विद्यालयं कदा गच्छति?
1: 9 वादने विद्यालयं गच्छामि।
0: उत्तमम्, तर्हि दिनेशः प्रातःकाले पञ्चवादने उत्तिष्ठति, नववादने विद्यालयं गच्छति. उत्तमं. कृपया दिनेश भवान् मां पृच्छतु.
1: भवती कदा भोजनं करोति?
0: अहं मध्याह्ने सार्धद्वादशवादने भोजनं करोमि.
1: क्रीडाङ्गणे कदा गच्छति?
0: अहं सार्धपञ्चवादने क्रीडाङ्गणं गच्छामि.
1: गृहं कदा आगच्छति?
0: क्रीडां क्रीडित्वा अहं सप्तवादने गृहम् आगच्छामि.
1: रात्रौ भोजनं कदा करोति?
0: सार्धसप्तवादने भोजनं करोमि.
1: शयनं कदा करोति?
0: शयनं तु रात्रि समये सार्धनववादने करोमि. तर्हि एषा दिनचर्या. आप भी अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं. कदा उठते हैं, कदा चाय पीते हैं, कदा ऑफिस जाते हैं. कदा यानी कब. ओके, तो एक छोटा सा गीत देखते हैं. वह है बिल्कुल सूर्य के बारे में. उदयति सूर्यः रजनी याति, विकसति पुष्पं पवनो वाति, प्रसरति गंधः गुंजति भृङ्गः, उदयाकाशे अभिनव रङ्गः. एतत् सूर्योदयस्य वर्णनम् अस्ति. आगच्छतु, अत्र आगच्छतु, उपरि पश्यतु. उपरि कः अस्ति? उपरि आकाशः अस्ति. आकाशे कः अस्ति? आकाशे सूर्यः अस्ति. सूर्यः किं करोति? सूर्यः प्रकाशं ददाति. सूर्यः कदा उदयति? सूर्यः प्रातःकाले उदयति. सायंकाले सः अस्तं गच्छति. सूर्यः प्रतिदिनं प्रातःकाले उदयति. अतः वयं सूर्यस्य स्तुतिं कुर्मः. ओ

0: ते धन्यवाद। आज का प्रश्न है, भवान कदा उत्तिष्ठति, आप कब उठते हैं सुबह में, उत्तर जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। अभ्यास अभवत। इदानीं राम रक्षा स्तोत्रं पठामः। अस्मिन् सप्ताहे वयं श्री राम रक्षा स्तोत्रस्य श्लोक संख्या 11-15 पर्यन्तं पठामः।
1: श्री गणेशाय नमः।
2: श्री गणेशाय नमः।
1: पाताल भूतल व्योम चारिणश्चद्मचारिणः
2: न द्रष्टुमपि शक्तास्ते
1: रक्षितं राम नामभिः। रामेति राम भद्रेति
2: रामचन्द्रेति वा स्मरन्
1: नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत्तस्य
2: करस्था सर्वसिद्धयः
1: वज्रपञ्जरनामेदम्
2: यो रामकवचं स्मरेत्
1: अव्याहताज्ञः सर्वत्र
2: लभते जयमङ्गलम्
1: आदिष्टवान्यथा स्वप्ने
2: राम रक्षामि मां हरः
1: तथा लिखितवान् प्रातः
2: प्रबुद्धो बुध कौशिकः। इस सप्ताह में हम इन श्लोकों का अभ्यास करेंगे। अगले सप्ताह में हम श्लोक संख्या 16 से 22 तक के श्लोक बोल के उनका अभ्यास करेंगे। श्लोक पठनम बहु सम्यक अभवत। आज संभाषण का 11वां दिन है। आपके प्रतिस्पंद से पता चलता है कि आप संभाषण समझ सकते हैं, मगर संभाषण नहीं कर सकते, ऐसे कई लोगों ने बताया है। हाँ, तो इसलिए क्या करें, क्या उपाय है? तो छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत कीजिए और वेणुध्वनि का कार्यक्रम ध्यान से सुनिए। श्वः वयम् सूर्य नमस्कार विषय के बारे में बोलेंगे, सूर्य देवता के मंत्र भी सीखेंगे, तो जरूर आइए, श्वः अवश्य मिलामः। शांति मंत्रेण कार्यक्रमस्य समाप्ति ही भवति। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: महत्व। रात अंधेरी हो तो राही भटक जाता है तथा ठोकरे खाता है, लेकिन अगर उसे एक छोटा सा दीपक मिल जाए तो वो कितनी रोशनी देता है, जिससे राही को राह दिखाई देने लगती है और दीपक के उजियारे में वो मंजिल पर सहज पहुंच जाता है। अर्थात केवल प्रकाश से ही मुकाम पर पहुंचना संभव होता है। ठीक ऐसे ही जीवन में ज्ञान का महत्व है, क्योंकि ज्ञान भी एक प्रकाश है जिसके बिना जीवन तो अंधकारमय हो जाता है। इसलिए किसी को भी ठीक समझाने को उस विषय पर प्रकाश डालना कहा जाता है। ज्ञान अर्थात समझ, और ये समझ हमें सच और झूठ का भेद बताती है, सही गलत का अंतर समझाती है। किसी भी चीज वस्तु या व्यक्ति विशेष के बारे में पूर्ण जानकारी होना ही ज्ञान है। वास्तव में ये एक शक्ति भी है जो हमें दुर्गुणों पर विजय दिलाने में बड़ी मदद करती है। विद्या अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे जीवन निर्वाह के लिए साधन और संपत्ति भी मिलती है। इसलिए ज्ञान को कमाई का स्रोत भी कहा गया है। इसके बिना तो व्यक्ति पिछड़ेपन का शिकार हो जाता है और मानव जीवन अधूरा। आज के दौर में शिक्षा के द्वारा भौतिक ज्ञान हमें सहज मिल जाता है, लेकिन सुखमय जीवन के लिए स्थूल दुनियावी ज्ञान के साथ साथ आवश्यक है आध्यात्मिक ज्ञान। स्वयं के चेतन और अविनाशी अस्तित्व का बोध ही आध्यात्मिक ज्ञान है, और यही ज्ञान विवेक को जन्म देता है। विवेकशील व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। जिंदगी के हर मोड़ पर विवेकवान ही जीत का सच्चा दावेदार साबित होता है। इसके विपरीत मनुष्य के अधपतन का कारण अज्ञान व उससे उपजा मिथ्या अभिमान है, जिसे मानव की दुर्गति और अंत में सर्वनाश होता है। लेकिन आत्मा के मूल गुण व शक्तियों का ज्ञान जीवन को नई दिशा देते हैं, तो परमात्मा ज्ञान जीवन के विकास के लिए शक्तियां प्रदान करता है। अतः ज्ञानवान बनिए और जीवन को नई रोशनी से आलोकित कीजिए। ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं है।
1: आपल्या भारतीय संस्कृतीला गुरुला अत्यंत महत्वाचे स्थान दिलेले आहे। आपण म्हणतो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णू, गुरुर देव महेश्वरा। याचा अर्थ असा होतो की गुरु हे ज्ञान देणारे, जीवनाला दिशा देणारे आणि अज्ञानाचा अंधकार दूर करणारे असतात। गुरु म्हणजे केवळ शाळेतील शिक्षक नव्हे तर आपल्या जीवनात योग्य मार्ग दाखवणारी प्रत्येक व्यक्ती आपली गुरु असू शकते। म्हणून आज आपण आपल्या गुरूंचे स्मरण करूया आणि त्यांनी दिलेल्या ज्ञानाचा उपयोग चांगल्या कार्यासाठी करूया। ज्ञानाचा खरा उपयोग तेव्हाच होतो जेव्हा त्या ज्ञानातून समाजाचे आणि इतरांचे जीवन चांगले करण्याचा प्रयत्न केला जातो। चला यासोबत ऐकवते पुढचं भक्तिगीत। तुम्ही ऐकत रहा वेणू धोनी 90.4 FM KLE कणसू भक्ती।

0: वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: मनाई जा रही है और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSP F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
1: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।

0: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Update रहे, आगे रहे. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को follow करें.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi.com और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विनुध्वनि 90.4 FM KLE कनसु भाषा संगम लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त RJ स्वरा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम स्क्वाड्रन लीडर जय सिम्हा के साथ बात कर रहे थे और उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया हुआ है, इसकी जानकारी ले रहे थे। आई एम श्योर आज के एपिसोड के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का शो।
1: सर, विनोदवनी के स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
1: आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि काफी अभी ये जो 35-45 एज ग्रुप के लोग हैं, वो भी अभी से कुछ बातें ऐसी है जो भूलते आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे फ़ोन बुक में यानी कि फ़ोन में हमने किसी का नंबर सेव किया है, कई दिनों के बाद में अगर हम वो सर्च करने जाते हैं तो वो किस नाम से सेव किया है वो भी हमें याद नहीं रहता।
2: तो
1: ये काफ़ी मैंने सुना है कई बार कि ऐसे हो जाता है कि किस नंबर से वो सेव, किस नाम से सेव किया है उनका नंबर, वो याद नहीं आता। तो पहले तो ये जानना चाहूंगी कि ऐसे होता क्यों है।
2: ये होता क्यों, बिकॉज ब्रेन का एक फॉर्मूला मैडम, यूज इट और लूज इट। ओके, आप यूज करते रहेंगे तो ब्रेन का अंदर सेल्स रहेगा, नहीं तो जेल चले जाएगा। अभी लुक एट माय हेयर, अभी मैं अपना बाल कट करूंगा तो अगेन दे विल ग्रो। इफ आई कट माय नेल्स, अगेन दे विल ग्रो। मेरा स्किन निकलेगा फिर दोबारा स्किन आ जाएगा। ब्रेन के अंदर जो सेल्स है ना, एक बार मर जाएंगे तो दोबारा पैदा नहीं होगा। आपको हम सबको जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जो है उनको वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, हमको हमेशा कुछ ना कुछ स्किल सीखना पड़ता रहता है, किताब पढ़ना रहता है, कुछ ना कुछ जानना। नो, वी शुड कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, वी हैव टू कीप ऑन यूजिंग आवर ब्रेन। सो मोस्ट पीपल स्पेशली द वुमेन और पीपल जो बिजनेस में सेटल होता है ना, तो जो कल किया सो आज, आज किया सो फिर अगेन दोबारा, मतलब नए चीज कुछ हम लोग नहीं सीख रहे और घर से ऑफिस, ऑफिस सेम रास्ता आते, सेम काम करते।

तो इसलिए क्या होता है, वो सेल्स जो है ना सोचता है कि मेरी जरूरत नहीं है, तो दे स्टार्ट डिटेरियरेटिंग। जैसे कि आपका अपने घर में किचन में एक चाकू है, नाइफ है, हम यूज नहीं करेंगे 6 महीना, ब्लंट हो जाएगा, तो उसको यूज करने से विल बी बेटर नो। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा ना जिंदगी में कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कुछ नई चीज सीखता रहना चाहिए, एंड यू शुड कीप यूजिंग दैट, देन दे विल हैव गुड मेमोरी। अभी WHO का रिपोर्ट ये है कि पूरा दुनिया

0: दो साल बिफोर उनका डेथ ना अपने बीवी नैन्सी रीगन को ही कुड नॉट इवन आइडेंटिफाई. और सब लोग ऐसे है, कुछ लोग अपने घर का एड्रेस बोलते हैं क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग. एक तो स्ट्रेस है और स्ट्रेस से ओवरकम करने का नंबर वन. नंबर टू क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कीप नो लर्निंग समथिंग न्यू. कुछ योगा करो, कुछ एक्सरसाइज करो, पहले बॉडी फिट रखो और ऑटोमेटिकली ब्रेन फिट रहेगा. और कभी कभी सुडोकू पजल सॉल्व करो, क्विज क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करो, किताब पढ़ो, कुछ नया स्किल सीखो, बड़े लोगों से बात करो. जैसे कि हमारे जो श्रोता हैं जो अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं वो काम में बिजी है, फिर भी कुछ जानने की जो चाहत है ना, दिस वन क्वालिटी हमारा 90.4 FM का जो भी श्रोता है ना, दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस वर्क, तो वी आर इन द राइट पाथ. ओके, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, नहीं तो बोलेगा मैं गाना सुन रहा हूँ, ये जयसमा कौन है, ये मनीषा मैम कौन है, ये मेमोरी क्या चीज है, हमको जरूरत ना चाहिए. तो कुछ जा सकता है ना, स्विच ऑफ कर देते, मगर कुछ मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ, ये जो चाहत है ना मैडम, दैट इज एनफ फॉर यू. सो एज लॉन्ग एज वी हैव गॉट ऐसा, हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो प्रोग्राम सुनने वाला वेणुध्वनि का, एंड दैट काइंड ऑफ पीपल आर द राइट पाथ टू हैव गुड मेमोरी टिल वी आर अलाइव.
1: ओके, यानी कि हमें हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, हमारी मेमोरी को थोड़ा काम देते रहना चाहिए.
0: yes, brain को यूज करना,
1: तभी ये एक्टिवेट रहेगी हमेशा, और हम जो भूलने की मतलब बीमारी हमें लगी रहती है उससे थोड़ा बाहर निकल सकते हैं.
0: एब्सोल्युटली राइट मैम,
1: करेक्ट. यानी कि बहुत अच्छी टिप्स आपने दे दी. फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है सर कि ठीक है, वर्किंग वुमन्स फिर भी बहुत सारे लोगों को मिलते हैं या फिर काफ़ी अलग अलग फील्ड में वो काम करते हैं, तो नई नई बातें उनके सामने आते हैं, तो नया कुछ जानते हैं या फिर वो होते रहता है रूटीन में. बट जो घर पे रहते हैं वुमन्स, जो उनका रूटीन का वर्क सिर्फ करते हैं, यानी कि खाना पकाना, बच्चों को रेडी करके भेजना एंड ऑल, वो जो करते हैं उनके लिए हम क्या बता सकते.
0: मेनी पीपल वुमेन ये सोचता है कि बस ओके, शादी हो गया, दो बच्चे पैदा हो गया, अभी घर में खाना बना दिया, बर्तन साफ कर दिया, कपड़ा धो लिया, और वो दो तीन टीवी प्रोग्राम देख लिया, फिर बच्चे आ गए, फिर उनके लिए खाना बना दिया, हस्बैंड आएगा उनको देखभाल कर दिया. इसका मतलब क्या है मैडम, सी खाना पीना सोना ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी मतलब भगवान की एक देन है, एक गिफ्ट है. सी वॉट यू आर इज गॉड गिफ्ट टू यू, वॉट यू बिकम इज योर रिटर्न गिफ्ट टू गॉड. भगवान ने इतना कुछ टैलेंट दिया, ओके, तो उसको यूज करना चाहिए. एवरी वुमेन हैज गॉट सम पोटेंशियल मैडम. ऐसा कि कुछ लोग हैं ओके, नो ओनली अपना कर्नाटक का, महाराष्ट्र का कुछ खाना बनाते हैं मैडम, और ये खाना बना के सेंड करते हैं कुरियर में टू अमेरिकन बच्चा, और वहां से उनको ऑनलाइन में पैसा मिलता है. कुछ लोग ना गुजरात में पापड़, लिज्जत पापड़ बना के 2,000 करोड़ का कंपनी बना दिया, और आप टेलरिंग कर सकते हो, गाना सिखा सकते हो बच्चों को, डांस सिखा सकते हो, आप कुछ लिख सकते हो ओके, और ऑनलाइन में कुछ सिखा सकते हो, नहीं तो 2-3 घंटा. नाउ यू कैन मेक यूज ऑफ योर टाइम प्रोडक्टिवली. जब बच्चा चला गया स्कूल, हस्बैंड चला गया ऑफिस, और नाउ टिल 4 बजे तक मैं अपना टाइम कैसे यूज करूँ ओके, कुछ ट्यूशन कर सकता हूँ क्या, कुछ टेलरिंग काम कर सकता हूँ क्या, कुछ अपने हस्बैंड को मदद कर सकता हूँ क्या. इफ यू थिंक नो, इतना कुछ ऑपरेशन हो जाएगा लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट होगा, एंड देन यू विल हैव यू नो लॉट ऑफ वर्क टू डू, यू विल बी एबल टू अर्न सम मनी, एंड यू विल बिकम अ रोल मॉडल टू योर चिल्ड्रन एज वेल. तो तब क्या हो गया, ब्रेन विल बिकम वेरी एक्टिव, कुछ ना कुछ ओके, कुछ पढ़ते रहना चाहिए, समथिंग दैट यू कीप रीडिंग राइट. सो देयर बाय व्हाट विल हैपन इज योर ब्रेन ऑल्सो विल बिकम एक्टिव, और जब ब्रेन एक्टिव होगा बॉडी ऑल्सो विल बिकम वेरी एक्टिव ओके. सो दिस आई वॉन्ट टू शेयर टू ऑल द वुमेन. अभी अपना जो अपना प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, उनको करना पड़ेगा खुद का, आई वॉन्ट टू डू सम वर्क ओके. एवरी वन हैज गॉट सम टैलेंट ओके. एक बार आंख बंद करके सोचो, बचपन से पैदा होने से आज तक ना, कौन सा काम करने से ओके आपको अच्छा लगता है. कब आपका स्कूल का टीचर होगा, मम्मी होगा, दादाजी होगा, आपका मामा जी होगा, कोई ना कोई बोला होगा ना, बिटिया ना आपका इसमें बहुत अच्छे करते हो, अच्छा पेंटिंग करते हो, अच्छा गा लेते हो, अच्छा एम्ब्रॉयडरी करते हो, अच्छा स्टिचिंग, कुछ ना कुछ तो होगा ना. उसको बाहर निकाल के उसमें आगे बढ़ने का, और उसमें क्या होता है, ब्रेन बिकम्स वेरी एक्टिव. एक तो पैसा मिलेगा, दूसरा यू बिकम अ रोल मॉडल, तीसरा ब्रेन एक्टिव भी रहेगा, जिंदगी का एक मकसद भी फिलअप हो जाएगा मैडम.
1: बहुत ही बढ़िया बात कही सर आपने, और काफ़ी सारे वुमन्स जो हमारा शो अभी सुन रहे होंगे उनके लिए तो बहुत घर बैठे बैठे एक अच्छी टिप्स उनको मिली जो अपनी लाइफ में यूज़ कर सके और थोड़ा सा अपनी लाइफ जो अभी है वो जी सके अच्छी खुशी से. तो सर अभी मेन सवाल ये है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, वो अपना लर्निंग स्किल रहे या फिर मेमोरी स्किल

0: रहे वो अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए हम जाते जाते हमारे लिसनर को क्या टिप्स देंगे?
1: पहले तो ब्रेन का एक ही लैंग्वेज है, वो जानता है, कन्नड़ नहीं जानता, मराठी नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता। ब्रेन का भाषा है पिक्चर का भाषा, जैसे घर में टीवी है ना, वैसा हर इंसान का ब्रेन में एक टीवी है। यदि हमने बोला डायनासोर, क्या आया आपके दिमाग में? डायनासोर का पिक्चर, नॉट द स्पेलिंग। यदि हमने बोला ताजमहल, आपने क्या देगा? ताजमहल का पोर्ट्रेट, नॉट द स्पेलिंग। यदि हमने बोला माँ, क्या है? माँ का तस्वीर, नॉट द स्पेलिंग। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि जब मैं मूवी देखता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। कांतारा मूवी ओके देखा था 1.5 ईयर पहले, ओके KGF चैप्टर 1, अभी भी बच्चा स्टोरी बोल सकता है, मगर कल जो पढ़ा है ना, ही डजंट रिमेम्बर। वाई? नाउ मूवी के अंदर पिक्चर्स है, टेक्स्ट बुक में पिक्चर नहीं है। तो ब्रेन को पिक्चर पसंद है, ब्रेन को ओनली पिक्चर जानता है। तो अभी क्या है, छोटा बच्चा होगा, आप तो 5th क्लास ना, हमने कुछ रामायण सिखाया, महाभारत सिखाया, कोई भी हिस्टोरिकल स्टोरी कॉमिक्स में सिखाते, ज़्यादा पिक्चर्स लेस वर्ड्स, बच्चे दे वर एबल टू लर्न। जब हाई स्कूल में आते हैं पिक्चर्स कम होता जाते हैं, एंड देन वर्ड्स विल इंक्रीज, एंड ब्रेन को नहीं पता चलता कि हाउ टू कन्वर्ट द यू नो वर्ड्स इंटू पिक्चर्स। हम लोग ये सिखाते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द वर्ड्स इंटू पिक्चर्स, ओके? मतलब जैसे कि कोई एक स्टोरी का माफी, एक मूवी का माफी, यू नो कैन यू सी द होल थिंग, जैसे कि गांधी जी ने किया दंडी मार्च, ओके? नाउ इफ यू कैन सी द होल प्रोसेस एज अ मूवी फॉर्म, नो दे कैन रिमेंबर। सिंस एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल इन द मूवी, नो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जो भी अभी इंडिया पॉपुलेशन प्रॉब्लम होगा, डेमोक्रेसी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ब्रेन ड्रेन होगा, लाइक अमेरिकन नो इलेक्शंस दैट आर गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ नवंबर डिसंबर में, कुछ भी होगा ना, वो क्वेश्चन होगा ना, उसको हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पिक्चर्स, ये हम लोग बच्चों को सिखा देंगे ना, इट बिकम्स इजी। हम लोग इसके लिए 5 दिन वर्कशॉप करते हैं, सो हर दिन नो 2 to 2.5 hours वर्कशॉप, उनको फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आई टीच देम, एंड बाय एंड ऑफ 5 days दे लर्न सो मेनी मेमोरी मेथड्स, ओके, विच हमारा स्कूल में हम लोग सीख नहीं रहे। तो ये बच्चे सीख पाएंगे तो दे कैन कन्वर्ट इन टेक्स्ट बुक इन टू पिक्चर्स, तब बच्चों को ना पढ़ो बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग कभी बच्चों को टीवी देखो नहीं बोलते, वो बैठ के देखते रहते हैं ना, वैसा खुद अपना किताब खोल के पढ़ने लगेगा बच्चे लोग। सो दे है नीड टू लर्न समथिंग कॉल्ड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मतलब इमेजिनेशन। सो ब्रेन भाषा को हमको समझना होगा, ओके? सो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू कन्वर्ट द वर्ड्स इन टू पिक्चर्स, दैट्स अ बेसिक, ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है, ये सीखेंगे तो रेस्ट ऑल विल बिकम पार्ट ऑफ द थिंग ना, ओके?
0: ओके सर, पर कुछ ऐसे टिप्स या फिर कुछ ऐसे ट्रिक्स जो अपने डेली रूटीन में हो, अपनी प्रैक्टिस में रखे और अपनी मेमोरी थोड़ी सी शार्प करे?
1: तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नाउ ऑल द चिल्ड्रन ना, यदि मैं कुछ 4-5 words देता हूँ, ओके, हमने बोला प्लेट, बकेट, ओके, एंड देन हमने बोला पोटैटो, हमने बोला एक पेंसिल, हमने बोला बाइक, हमने बोला फिश, अभी मैं 5-6 words बोला, हमको बिल्कुल याद नहीं होता। अभी क्या करना पड़ेगा, उनको एक विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका हाथ में एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर आई एम पुटिंग ऑन पिंक कलर बकेट, बकेट के अंदर हम डाल रहे हैं कुछ आलू पोटैटो, और जब भर गया उसका ऊपर एक पेंसिल है, और उसके ऊपर एक बाइक खड़ी है, एंड वन फिश वो बाइक को चला रही है। सो द मोमेंट यू सी वन टू द अदर, ऑटोमेटिकली यू विल गेट वन टू द अदर कनेक्शन, ओके? दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन मेथड। और दूसरा चेक थिंग है, कोई भी वर्ड को नो हमको कुछ याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोलूंगा बल्गेरिया, एक देश है, उनका कैपिटल है सोफिया। अभी बल्गेरिया तो हमने बोला ब्रेन के अंदर एक टीवी है, यू सी पिक्चर्स, कोई पिक्चर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, सोफिया पिक्चर नहीं आ रहा। अब बच्चा क्या करेगा, बल्गेरिया सोफिया, बल्गेरिया सोफिया, बल्गेरिया सोफिया, और 2-3-4-5 बार पढ़ेगा ना। अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पुटिंग सेंस इनटू नॉनसेंस। बल्गेरिया नहीं जानते हम लोग, इसको तोड़ देते हम लोग। बल्गेरिया मतलब बुल गिर गया, कहां पे गिर गया, सोफिया माने सोफा के ऊपर गिर गया, सो बुल गिर गया सोफा में, ऐसा हम लोग पिक्चर दिखाते। तो करने से क्या होता है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू रिमेंबर। जैसे कि आपका कोई साइंटिफिक वर्ड्स होगा, बोटेनिकल वर्ड्स होगा, जुअलॉजिकल वर्ड्स होगा, हमारे घर में एक मेडिकल किट है, एक टैबलेट इंजेक्शन सिरप बॉटल का नाम होगा, ऐसा वेरी इजीली दे विल बी एबल टू रिमेंबर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू पिक्चर्स। दिस इज फर्स्ट मेथड। उसके बाद जैसे कि एक टेक्निक बताता हूँ, जैसे कि निमोनिक मेथड है, जैसे कि 7 colors ऑफ द रेनबो हम कैसे याद करते हैं, सो विप जी आर बोल के याद करते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज, रेड। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक वर्ड का एक फर्स्ट लेटर लेके एक वर्ड बना के हम लोग सीखते याद करते, वैसा एक मेथड है। इसके अलावा हम ऑल्सो विल डू समथिंग कॉल्ड नो वन मैकेनिकल मेथड, जुडिशियस मेथड, ओके, एंड समथिंग कॉल्ड मेमोरी पैलेस मेथड हम सिखाते हैं उनको, ओके, जर्नी मेथड, लोस मेथड, ऐसा ना। पिछले 12 साल से हमने 24 मेथड्स डेवलप किया एंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स नो वन आफ्टर द अदर, ओके। सो घर को सुंदर बनाने शुरुआत करते हैं बुनियाद से, देन वी पुट वॉल, देन उसके बाद हम लोग स्लैब डालते हैं, देन उसके बाद वुडन फिक्चर्स, उसके बाद ग्लास डालते हैं, उसके अंदर फ्लोरिंग करते हैं, उसके अंदर विंडोज फिक्स करते हैं, उसका किचन करते हैं, ऐसा सुंदर बनाते हैं ना, ऐसा नो एवरीथिंग हैज गॉट वन टेक्निक, ओके, डिफरेंट डिफरेंट वेज। अब बच्चों को पूरा सीखना होगा एंड इफ दे कैन लर्न इट बी गुड, ओके। सो वी आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट में हम लोग हैं, ओके, और ऑनलाइन में कोई सीखना चाहते हैं जो हमारा श्रोता है, ओके, दे कैन लिसन लर्न फ्रॉम ऑनलाइन भी सीख सकते हो, और कोई भी टीचर है वो सीखेंगे तो शी कैन टीच टू नो हर चिल्ड्रन, और कोई स्कूल में, ओके, कोई ग्रुप ऑफ टीचर्स दे सीखेंगे तो इट बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ देम, ओके। सो वी आर इन दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग मेमोरी क्योंकि हम लोग ये सुने थे कि हेल्दी माइंड, ओके, इन हेल्दी बॉडी, सो माइंड को हेल्दी रखना है ऑलवेज, ओके, सो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
0: बहुत अच्छा सर। तो ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि ये तो हो गया स्कूल स्टूडेंट के लिए, कुछ टेक्निक्स आपने बताए जो प्रैक्टिस में अगर रखेंगे तो उनकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प हो जाएगी, हालांकि ये एक कोर्स है जो कोर्स पूरी तरह से अगर कंप्लीट हो जाए तो उनको बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे, बट हमारे शो के माध्यम से आपने कुछ टेक्निक्स बता दिए हैं। उसी के साथ साथ जो घर बैठे लोग रहते हैं या फिर जो वर्किंग रहते हैं उनके लिए भी कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे?
1: यस सर्टनली। मेरी वुमेन दे कंप्लेन ना कि मुझे कभी चश्मा नहीं मिलता, चाबी नहीं मिलता, क्योंकि एक जगह में एक आइटम रखने की आदत नहीं और एक आइटम एक जगह में नहीं रखते, दैट्स अ बिग थिंग। द बेसिक थिंग इज कोई आदमी बाहर निकलता है, अंदर आता है, क्या लेके जाएगा? जेब में एक पेन होगा, एक मोबाइल फोन होगा, एक चश्मा होगा, एंड देन उनका जेब में एक पर्स होगा, एक कर्चीफ होगा, या एंड देन बेसिकली व्हाट विल हैव, ओके, नाउ दिस 5-6 और गाड़ी का चाबी होगा। इसका मतलब जब घर आते हैं ना, चप्पल, जूता, शू स्टैंड में, ओके, और आपका बाइक, कार का चाबी, अलमारी का चाबी, ऑफिस का चाबी, वहाँ पे चाबी का स्टैंड में, और तीसरा मोबाइल जो है ना चार्जिंग पॉइंट में, हेलमेट है ना वो टी पाई के ऊपर, आपका जो चश्मा और पर्स है ना टीवी के ऊपर, ओके, ऐसा रखने का 21 डेज हम आदत करेंगे, ओके, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सो ये जो ऑल द मदर्स हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, शी शुड बी द हेड ऑफ द फैमिली, तो हस्बैंड हो, बच्ची हो, बेटा हो, जो जब जब आएंगे ना उनका डिसिप्लिन, बेटा ये आइटम स्कूल बैग यहाँ पे क्यों है, वहाँ पे रखना था ना, आपका यूनिफॉर्म यहाँ पे क्यों, अलमारी में रखना चाहिए ना, हाजी आपका मोबाइल फोन यहाँ पे क्यों पड़े, वाई आर नॉट पुटिंग, सी नो, एक जगह में एक आइटम रखने का आदत करने से रात को 12:30 नो नींद में भी कोई पूछेगा पापा का पर्स, सबको मालूम होगा पापा का पर्स होगा, वो टेबल का ड्रायर में होगा, यू विल बी एबल टू गेट इट, नंबर वन। और नंबर टू, एक छोटे सा मेथड है, जैसे कि दूध रख के भूल जाते हैं मेनी पीपल, ओके, पूरा जल जाता है, कभी गीजर ऑन कर दिया भूल गया, फैन ऑन कर दिया भूल गया, और हस्बैंड चिल्लाता है कि इतना मेरा बिजली का बिल, थोड़ा एक लीटर का दूध खराब कर दिया, औरत लोग पता नहीं चलता कि यार मैं घर संभालूं, बच्चों को संभालूं, ये दूध मैं भूल गया। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है मालूम है, जब हम लोग दूध रख रहे हैं ना, वी आर नॉट यूजिंग समथिंग का बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब हर इंसान का बॉडी में एक क्लॉक है, जैसे कि हम लोग अलार्म रखते हैं मोबाइल के अंदर, जैसे कि एवरी सेल विल वर्क एज ए क्लॉक। जैसे कि आपकी सहेली कोई बोले, मनीषा मैम आई एम गोइंग टू बेंगलोर एंड देन मेरा ट्रेन बेलगाम से जा रहा, 4 सुबह ट्रेन आएगी, 10-15 रुकेगी, शायद मिल सकता हूँ क्या? आपका बोलते, अरे क्यों नहीं मिलूंगी, मिल के बहुत दिन हो गए ना, 4 मैं आऊंगे ना, काफी लेके हम लोग बात करेंगे। और आप अलार्म रखा 3 उठने के लिए, रात को 2 से 3-4 उठ कर देखती हो ना कि 3 बज गया कि नहीं बजा, क्योंकि आपने अपना ब्रेन को बॉडी को बोल के सो गई ना, और बॉडी आपको उठाती है बिफोर द अलार्म, ओके। ऐसा क्या करना पड़ेगा, जब आप दूध रख रहे हो ना, आपका दिमाग क्या, आप बच्चा बोला अरे बेटा आ रहा हूँ, इतना मैं सासू माँ, हाँ सासू माँ मैं आ रहा हूँ पानी लेके, और हस्बैंड बोलता है मेरे टावल दा, हाँ मैं आ रहा हूँ, वो सब्जी वाला, हाँ मैम साहब आपका सब्जी, ओके, 4-5 लोग ना उनको ऐसा पुकारा, उनको दिमाग नहीं चल रहा। जब उनको क्या करना पड़ेगा, जब दूध रख रहे ना, अभी आई एम कीपिंग मिल्क ऑन द स्टोव, अभी 5 बाद मुझे इसको ऑफ करने का, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना अपने ब्रेन को बोलने का, ब्रेन का नो फ्रॉम देयर नो इट गोज टू एवरी सेल ऑफ अ बॉडी। यदि आप टीवी देख रहे हो, बगल वाला आंटी से बात कर रही हो, आप बाथरूम में हो ना, चार चार मिनट के बाद ना कुछ तो लगेगा कि अजीब सा कुछ तो है यार बॉडी में, कुछ वो समथिंग इज देयर, क्या वो मुझे, ओ माय गॉड, वो दूध ऑफ करने का आपको पता चलेगा. सो वी नीड टू बी कॉन्शियस इन डूइंग सम वर्क. जब गीजर ऑन कर रहे ना, अभी मैं गीजर ऑन कर रही हूँ, 7 मिनट के बाद इसको ऑफ करना चाहिए, और जब घर से निकल रहा हूं मुझे फैन को ऑन ऑफ करना चाहिए. दैट इन्फॉर्मेशन गो गेट इन टू ब्रेन एंड देन दे विल बी एबल टू ओवरकम ऑल दिस स्मॉल प्रॉब्लम्स. कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे मेमोरी ठीक नहीं है. ओके, और दूसरा बात क्या है मालूम है, छोटी चीज भूल जाते हैं ना, सब लोग बोलने लगते हैं कि मेरी याददाश्त ठीक नहीं, मेमोरी ठीक नहीं, ऐसा बोल बोल के ना खुद अपन को लगता है कि यार मेमोरी ठीक नहीं. बोलना हमेशा आई गॉट गुड मेमोरी, आई एम द सुपर पर्सन, आई हैव वेरी गुड मेमोरी, मैं कैसे भूल जाऊंगी, कौन जैसे उससे अच्छा मेरे मेमोरी है. ऐसे बोलने से क्या होता है मालूम है, now your brain will live up to your expectation. So always be confident that you can remember. Okay, aur kabhi kabhi na aisa kabhi program aisa milta hai, koi memory program, aap chote ho bade ho, seekhne ka koi umar nahi rehta, zindagi ka aakhri waqt tak to hum seekh sakte hain. Okay, to seekhne mein koi insert nahi hota, you should keep learning. kabhi aapko mauka mile कोई भी, नॉट ओनली जयसिम्हा और कोई और मिले तो उनसे कुछ ना कुछ सीखना, 1-3% बेनिफिट होगा जिंदगी में. दैट्स वे टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ. या
0: ओके सर, बहुत अच्छी बातें कही आपने, और हमारे जो ऑडियंस है जो हमें सुन रही है अभी, उनको भी बहुत यूजफुल होगी वो अपनी रूटीन में. और उसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे हैबिट्स ऐसे होते हैं जिसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं बट वो हमसे नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम क्या एडवाइस करेंगे कि फिर वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हो या फिर यूथ जनरेशन हो या फिर वर्किंग वुमन्स हो या फिर वर्किंग कोई भी हो.
1: डॉक्टर से बोलते हैं मैडम, कोई भी अच्छी आदत अपनानी हो, कोई बुरी आदत छोड़ना हो, 21 डेज ओके, आपको उससे लग के रहना पड़ेगा. सोचिए मैं सुबह सुबह नाउ मैं वॉकिंग मुझे जाने का, ये मेरा आदत, आई वॉन्ट अपनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट दिस हैबिट. तो क्या करना पड़ेगा, हर दिन अलार्म रख के ना उठ के अपने सहेली के साथ एवरीडे यू गो फॉर वॉक. कितना दिन, 21 डेज. 22nd डे वेदर आपका सहेली आ रही है नहीं आ रही है, अलार्म बजे ऑटोमेटिकली यू विल ऑटोमेटिक गेट अप, मतलब 21 डेज. सोचो मैं स्मोकिंग करता हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, तो 21 डेज, डोंट इवन थिंक अबाउट स्मोकिंग, डोंट इवन टच स्मोकिंग, डोंट इवन गो नियर टू देम. 22nd डे आपको स्मोक करने की आपको चाहत भी नहीं लगेगा, मतलब 21 डेज कुछ भी चीज ना लगा के कॉन्शियसली करना चाहिए. इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. इसलिए आपने सोचा होगा जो लोग शबरीमाला जाते हैं, अयप्पा टेम्पल जाते हैं अपने कर्नाटक में, आंध्र में, तमिलनाडु में, ऑलमोस्ट 1 month तक ना वो ब्लैक कलर का लुंगी पहनते, ब्लैक कलर ड्रेस, वो चप्पल भी नहीं पहनते, वो जमीन पे सोते. क्यों? ऐसा डिसिप्लिन करने से रेस्ट 11 महीने भी उसी रास्ते में जाएंगे. ऐसा कि कोई इस्लाम में रमजान के पहले समर में 1 month तक ना वो लोग सुबह 5 बजे से लेके शाम तक ना एक बूंद का पानी भी नहीं पीते. इफ यू कैन कंट्रोल दैट ओके थिंग, रेस्ट ऑफ इट विल बिकम सो इजी. एंड सेम थिंग इन क्रिश्चियनिटी एज वेल. इसका मतलब हमारे बुजुर्ग लोग ना वो लोग साइंस नहीं बोले, बिकॉज बोलने से हम लोग ना ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना हम लोग, तो बोलते क्या साइंस है. इसलिए भगवान का नाम पे ना हमको अच्छी आदत सिखाए. ओके, सो वेदर विच एवर रिलीजन हो हमको अच्छी बात सिखाए ना, इवन एनी प्रैक्टिस ओके राइट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस. सो यू मस्ट लर्न हर चीज का बिहाइंड इट, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन. ओके, यू कैन फाइंड आउट दैट रीजन नाउ. ओके, इट्स सो ग्रेट बिकॉज हिंदुस्तान में इतना इतना सालों से अभी भी वी आर वन, वी आर एबल टू लिव विथ सो मेनी धर्म, ओके, कास्ट, कम्युनिटी, स्टेट्स, लैंग्वेजेस, बिकॉज ऑफ आवर फाउंडेशन क्या है, हमारा एकता, मतलब वी आर ऑल इंडियंस, हम लोग हिंदुस्तानी है, एक चीज जो है ना. और दिस इज कमिंग फ्रॉम अवर धर्म, वेदर विच एवर द रिलीजन दैट यू आर फ्रॉम. सो दे टॉट अस ओनली गुड थिंग्स, एंड इफ यू कैन पास दिस टू द नेक्स्ट जनरेशन, आई एम श्योर इंडिया कैन बी द नंबर वन कंट्री इन द होल वर्ल्ड इन द ईयर्स टू कम. और दैट शुड बी अवर फोकस, दैट शुड बी अवर मकसद, ओके, दैट शुड बी अवर गोल इन लाइफ.
0: ओके सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे शो में बता दी है, और आपने इतना समय हमें दिया इस शो में आने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और धन्यवाद 90.4 अपने वेणुध्वनी श्रोताओं के लिए. थैंक यू सो मच, आई हैड कम टू बेलगाम एंड देन आई हैपेंड टू मीट मनीषा मैम एंड ऑल दिस स्टाफ ऑफ 90.4 FM. आप सुनते रहेगा, और मेरे जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपसे, और यू ट्राई टू पास ऑन दिस एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू सो मच मैम.
0: थैंक यू सो मच. Thank you.
2: ये था आज का भाषा संगम का कार्यक्रम। आई होप आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। बाय, टेक केयर और सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनासू।

0: KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health-related problems. Experienced doctors and ultra-modern facilities ke saath. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center, Nehru Nagar, Pelagavi. Call 08312473777.
1: हेलो एंड नमस्कार सभी सुनने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार. आप मुझे सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM पर. मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप खाना बना रहे हो और या खा रहे हो तो मुस्कुराहट के साथ में खाना बनाइए और खाइए. देखिए जीवन कितना खुश होगा ये आपको भी अंदाजा नहीं है. चलिए अभी मुस्कुराइए.

हेलो एंड नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल माय लवली पीपल. वेलकम टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स एंड यू हैव ट्यून्ड इनटू बेलगम्स फर्स्ट एंड बिगेस्ट रेडियो स्टेशन रेनो ध्वनि 90.4 KLE कनासू. और मैं हूँ आप सभी का प्यारा दुलारा हैंडसम हंक रेडियो दोस्त आरजे आयुष. और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द पीपल का फेवरेट टॉपिक, और वो है योर स्लीपिंग पैटर्न्स. जी नहीं, मैं सोने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके स्लीपिंग पैटर्न्स के, कि आप कितनी देर सोते हैं. जी नहीं, सोने के बारे में नहीं, हम जानेंगे आपके स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में और करेंगे बात कैसे गुड स्लीप हेल्प्स यू इन लाइफ एंड ड्रॉबैक्स ऑफ योर बैड स्लीपिंग पैटर्न. तो आज की शाम को बनाएंगे मनोरंजक और जानकारी भरी. आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा मुझे यानी आरजे आयुष को हमारे शो बी रिलैक्स में ओनली ऑन रेनो ध्वनि 90.4 KLE कनासू पर.

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं आरजे आयुष को ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। दोस्तों, जैसे खाना पीना हर चीज इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपकी लाइफ में और सेहत के लिए सोना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक रखने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई या लैक ऑफ स्लीप रही, या कभी आप देर रात को सोए और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए तो मूड आपका थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है, आप हर किसी पे चिढ़ जाते हैं या उनसे गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या है? यही तो है अधूरी नींद के लक्षण। स्लीपिंग पैटर्न रेफर्स टू रेगुलरिटी ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल चेंजेस, टेक्नोलॉजी और इंक्रीज्ड स्ट्रेस के कारण डिसरप्टेड स्लीपिंग पैटर्न एक प्रीवेलेंट इशू बन गया है। चलिए, मैं आपको कई और जानकारी दूंगा, बट आफ्टर दिस अमेजिंग सॉन्ग्स। तो हंसते रहिए और सुनते रहिए मुझे आरजे आयुष को ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
2: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा निशलावत थी।

पतंजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक तुम्हारा शादी मत करना।

हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। हमारा शो भी रिलैक्स चल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं थोड़े से आपके स्लीपिंग पैटर्न की, मतलब आपके सोने के तरीकों की। चलिए दोस्तों, अब स्लीपिंग पैटर्न्स की बात चल रही है तो मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। एडिक्वेट स्लीप या प्रॉपर स्लीप एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ बनाए रखने में और फंक्शन करने में, और ये हेल्प करते हैं आपकी मेमोरी अच्छी करने में, आपकी बॉडी को एक पॉजिटिवली प्रोसेस करने में, आपके इमोशन को बैलेंस करने में, उनका बैलेंस बनाने में, जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी ठीक रहती है और एकदम क्रिएटिविटी बनाए रखती है। और अगर इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूं तो जैसे हेल्दी स्लीप ऑल्सो इम्प्रूव्स योर वेरी वेरी वेरी ग्रेट इम्यून सिस्टम, एनर्जी रिस्टोरेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशंस। तो ऐसे लोग जिनका स्लीपिंग पैटर्न कंसिस्टेंट है या रेगुलर है आर मोर लाइकली टू हैव अ इनहांस्ड मूड, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आप समझ ही रहोगे कितना इंपॉर्टेंट है सोना हमारी लाइफ के लिए। और अब वक्त हो गया है कुछ जबरदस्त गाने सुनाने का, तो आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

बात है, आप अब तक बने हुए हैं, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों बात करते हैं कुछ कारणों की जिससे आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ा हुआ रह सकता है। वैसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं, पर आपका स्लीपिंग पैटर्न पे कई पॉजिटिवली और नेगेटिवली चेंजेस आ सकते हैं इन कारणों की वजह से। लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे इररेगुलर स्लीप स्केड्यूल, एक्सेसिव कैफीन, ये जो आप एक्सेसिव कैफीन या कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कॉफी वगैरह पीते रहते हैं तो उसको कहते हैं एक्सेसिव कैफीन, या फिर अल्कोहल कंजप्शन एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द स्लीपिंग पैटर्न ऑफ योर्स। टेक्नोलॉजी, खासकर स्क्रीन जिससे ब्लू लाइट रेज निकलती है, जो जिसमें सबसे बड़ा हाथ होता है आपका फोन, आपके लैपटॉप्स का, ये भी आपका नेचुरल स्लीपिंग पैटर्न और वेकिंग अप साइकिल या उठने का टाइमिंग थोड़ा सा बिगाड़ सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस है जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और भी बहुत सारे जो आपकी स्लीपिंग साइकिल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। तो दोस्तों देर रात तक आप अपना फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज्यादा यूज ना करें और समय पर सोने की कोशिश करें। मुझे पता है आप भी एकदम ट्राई करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर ट्राई कीजिए कि जल्दी सो पाए, जिससे आपका दिन, सुबह और हर किसी की सुबह एकदम खुशनुमा निकले और आप किसी पर चिड़चिड़ ना करें। और हम गुजारेंगे लेकिन आपकी शाम थोड़ी सी खुशनुमा और सुनाएंगे आपको एकदम चटकीले गाने। सुनते रहिए हमारे साथ वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू।

0: Sir, there is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss.
1: Doctor Ujjav को heal attend it. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
0: Sir, there is an emergency case of Mehr Garewal. Accident है.
1: क्या नाम बता?
0: Mehr Garewal.
1: मुझे ले चलो.
0: Come.

तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे आयुष को ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। आपकी स्लीपिंग साइकिल्स के बारे में जो आज बात चल रही है, मैं उसके बारे में थोड़ी और टिप्स आपको देता हूँ। जानते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस का आपकी हेल्थ पर क्या क्या असर पड़ सकता है। स्लीप डेप्रिवेशन यानी कम नींद होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है आपको बताता हूँ। मतलब मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, आपका अटेंशन थोड़ा सा लूज हो सकता है। अगर आप किसी काम में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फोकस आपका थोड़ा सा डगमगा सकता है। डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ सकता है। अगर आप कोई निर्णय लेने वाले हैं तो हो सकता है अधूरी नींद के कारण वो निर्णय आप गलत ले लें। लंबे समय तक स्लीपिंग पैटर्न खराब रहने से क्रोनिक कंडीशंस रहने का भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है। क्रोनिक कंडीशंस जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो ओबेसिटी का मतलब होता है ज्यादा वजन बढ़ जाना एकदम से, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। डायबिटीज, हार्ट रिस्क, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। देखा जाए तो डिस्टर्ब स्लीप की वजह से हमारा ओवरऑल इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाता है। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ उससे आप काफी इंप्रूव हो जाएंगे। बताएंगे आपको कुछ और स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव ऑन योर स्लीपिंग पैटर्न्स आफ्टर दिस हार्ट टचिंग सॉन्ग्स। सुनते रहिए मेरे साथ आरजे आयुष के साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, हमारा शो बी रिलैक्स।

0: Hello, welcome, welcome, welcome back, ladies and gentlemen and people of all the ages to our show Be Relaxed. One more time, main RJ Ayush aapke saath bana hua hu only on Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu par, jo ki Belgium ka sabse bada aur sabse pehla radio station hai. To dosto, jaise maine aapko kuch strategies share kari, unhi mein main thodi aur strategies add kar deta hu. Aap ek consistent sleep ke liye apna ek schedule bana sakte hain, jo jisse aap maintain kare apni regular sleeping pattern ko aur aapke uthne ke timing ko. Even on the weekends, तो ऐसा ना सोचो कि weekends में मैं थोड़ा ज़्यादा सो लेता हूँ. Try कीजिए वो limit को बरकरार रखने के लिए. Creating a relaxing bedtime ritual, जैसे अपने आप को थोड़ी engaging activities में व्यस्त रखे, जैसे आप हो सकता है सोने से पहले reading कर सकते हैं, meditate कर सकते हैं, या फिर सोने से पहले आप hot water shower ले सकते हैं या warm shower ले सकते हैं, जिससे body को यह एहसास हो जाएगा कि भैया चलो अभी सोने का time हो गया है. And you will get little relax after that. Limit screen time बहुत ही important है. Limit screen time जो हम लोग कभी नहीं करते, हमें कोशिश करना है कि हम ये करें कि लगभग सोने से एक घंटे पहले तक अपने फोन्स को बाय बाय बोल दीजिए, लैपटॉप्स को बाय बाय बोल दीजिए और उन्हें कर दीजिए बंद और रख दीजिए साइड में, जिससे आपकी नींद बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी एक घंटे पहले मिनिमम. कंट्रोल द स्लीपिंग एनवायरमेंट, अपने बेडरूम में या जहां आप सोते हैं वहां पर थोड़ी सी रोशनी कम कर सकते हैं. ऐसी जगह पर सोए जहां पर थोड़ी सी शांति हो और कंफर्टेबल टेम्परेचर हो, ऐसा ना हो ज्यादा गर्मी हो या ज्यादा ठंडी हो, वरना इससे भी आपकी स्लीप थोड़ी सी बिगड़ सकती है. चलिए हम भी आपको अब थोड़ा सा कंफर्ट कर देते हैं और सुनाते हैं आपको ये मस्ती भरे सॉन्ग्स. कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु आजे आयुष के साथ.
1: வேகமாடியா

हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर और आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे पहला और बड़ा रेडियो स्टेशन वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसु। चलिए कुछ और स्ट्रेटजीज ऐड करते हुए आपको बताता हूँ। रात को सोने से पहले हेवी मील्स या खाना अवॉइड करते हैं, मतलब हम किसी को आदत होती है भैया रात को फोन चलाते चलाते भूख लगी तो ये खा लिया या ये खाना खा लिया या बहुत ही ज्यादा हेवी मील खा लिया, जूस पी लिया, जो कि आपकी सेहत के लिए भी और आपकी नींद के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो इसे अवॉइड करें, आपकी क्वालिटी स्लीप इससे खराब हो सकती है। और स्ट्रेस को भूल जाए लॉन्ग ब्रेथ्स प्रैक्टिसेस कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको अच्छी नींद मिलेगी। यू कैन लिसन टू, जो मैं भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, यू कैन लिसन टू पीसफुल म्यूजिक, यानी ऐसे गाने सुने जिससे आपको नींद आए, आपका माइंड और आपका प्रेशर दिमाग से एकदम छू मंतर हो जाए, तो ऐसे गाने सुनने की कोशिश कीजिए। दोस्तों देखा जाए तो हम में से कई लोग देर रात तक जागते रहते हैं, या तो काम करते रहते हैं या फिर फोन यूज करते रहते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत चल ही रहा है, जल्दी नींद किसे ही आती है, लेकिन ट्राई कीजिए थोड़ा सा जल्दी सोने के लिए। यू शुड ऑलवेज गेट मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। और अब वक्त हो गया है कुछ खूबसूरत गानों का, तो आप सुनते रहिए मुझे यानी आरजे आयुष को हमारे शो बी रिलैक्स में, ओनली ऑन वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

टू आवर शो बी रिलैक्स। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में, जिसमें हमने बात की कैसे आप स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं फॉर अ क्वालिटी स्लीप, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को समझा। हमेशा याद रखिए, आपकी लाइफ में जितना काम जरूरी है उतना ही रेस्ट या नींद भी जरूरी है, जिससे आपका मूड हमेशा अच्छा रहता है। ट्राई कीजिए आप आफ्टरनून में या दोपहर में थोड़ा कम सोए तो रात को नींद आपको थोड़ी अच्छी और जल्दी आ जाएगी, ये ट्राई कर सकते हैं आप। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा आपको रात को नींद नहीं आती या बार बार आपकी नींद थोड़ी सी टूटने लग जाती है, लक्षण हो सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के। अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है तो आप प्लीज मेडिकल एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसका आपको नॉलेज नहीं था। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही और जल्द मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स में, ओनली ऑन वेनु धोनी 90.4 KLE कनसु आरजे आयुष के साथ। लेकिन तब तक के लिए लूंगा मैं आपसे विदा, मिलेंगे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग अहेड। बाय बाय, शब्बा खैर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 KLE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ट्वेंटी 90.4 के एल ई कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।